0: Mecca Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Travel at all protected.
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
4: Mecca Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire, with the UK's biggest Asian hits. Mecca Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Feel good, lay back and enjoy the biggest hits through the night on Mecca Radio.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन का विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जोर, जोर ना जीवन मरण नहीं जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान।

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialise in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रेवल मंत्रा.
3: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
5: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
6: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester एंड Leica Radio Midlands पर.

0: This is Leica Radio.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: proud hospitality partner, Ragasan.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
2: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
0: ये है लाइका गो।

0: लीजिए दो बैक टू बैक के रोमांटिक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर एक बार फिर से ऋतु शर्मा हाजिर है 10 से 1 आज और पूरे हफ्ते यानी कि आज से लेकर फ्राइडे तक ऋतु शर्मा आपके साथ रहेगी सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और उसके बाद नेक्स्ट मंडे से रवि शर्मा जी हाजिर हो जाएंगे अपनी हॉट सीट पर अपना मनोरंजन शो लेकर। लेकिन फिलहाल तो आप सभी का स्वागत है इस शो में, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, गुड मॉर्निंग, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते स्वस्थ हैप्पी हेल्दी है और इस मौसम का मजा ले रहे हैं जिसने एक बार फिर से करवट बदली है। इस हफ्ते मौसम अच्छा रहने वाला है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसके बाद वाला मौसम फिर से गर्मा गर्म होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस हफ्ते थोड़ी राहत महसूस कीजिए और इस टेम्परेचर को एंजॉय कीजिए और गीतों की फिक्र छोड़ दीजिए। आज भी एक से बढ़कर एक गीत बजाने की और आपको सुनवाने की पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 पाउंड आज आपको देगा 124.2 भारतीय रुपए, और आपको बता दें कि ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, और इस मंथ के एंड से पहले पहले आप 75 पाउंड का वाउचर जीत सकते हैं एवरीडे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, आल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah.
1: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शाम को 6 बजे से ब्राजील और जापान के बीच में मैच होगा, और उसके बाद जर्मनी और पैराग्वे की टीम्स भिड़ेंगी। लेकिन याद दिला दें कि आप 15 मिनट्स की लीगल एडवाइस ले सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से जब आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
4: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
3: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
4: Also explore 2026 cruises
3: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
7: OMG!
6: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
7: Murder Mystery!
6: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. mkdw.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
10: Radio partner, Leica Radio.
11: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: Kuch exciting khane ka man hai? To aao Egg Junction Leicester. Yahan milega sizzling egg keema, flavorful boil tikka rice aur special veg starters. Sab ke liye kuch na kuch hai. 62 to 64 Belgrave Road, LE4 5AS par. Chahe dine in karo, take away lo ya Uber Eats aur Deliveroo se mangwao. Call kijiye 0116 332 5100. Egg Junction jo Wembley aur Kingsbury mein to hai, ab Leicester mein. Jahan har bite hai extraordinary.
14: Punjab di biggest tunes

0: इस गाने को जब लता जी ने गाया था तो उनकी उम्र काफी थी, लेकिन फिर भी मिठास में कोई कमी नहीं आई है। इस गीत को सुनकर आज भी बहुत मजा आता है, और उसी तरह से माधुरी दीक्षित जैसी 90s के दौर में लगती थी, आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। चेहरे पर स्माइल देखकर सबका दिल खुश हो जाता है। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया था मैंने ये गाना।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो भाई आप सब हमारा साथ देने के लिए जुड़ चुके हैं, आपके मैसेजेस भी मिल चुके हैं। थैंक यू राजीव पटेल जी, यस मैंने आपका मैसेज देख लिया है, थैंक यू साथ देने के लिए। शेखर आनंद जी हमारे साथ है, कहते हैं तो रोमांटिक गीतों से शुरुआत हुई है तो आज मूड रोमांटिक रहेगा। भाई बॉलीवुड के गीतों में रोमांस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, तो मैं ना भी चाहूं तो भी मूड रोमांटिक ही रहेगा। आप साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। किरण हैरो से हमारा साथ दे रही है, वियाना में अनिल सोनी जी हैं, मृदु जी हैं, हमारे हरीश खत्री हैं, मिस्टर शेख एंड सहर, वजाहत एलेक्सा पर सुन रहे हैं, एंड भारत से गिरीश जी साथ दे रहे हैं। थैंक यू हंसा बोरा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ यूं ही देते रहिए क्योंकि गीत यूं ही मैं सुनाती रहूंगी, लेकिन फिलहाल तो समय है आपको आज के ताजा समाचार सुनवाने का, वो भी हिंदी में।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर भारत से। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50th राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने संसद को भी संबोधित किया है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी की है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं जो होंगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी का अलर्ट जारी किया है। केरल और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वो नीट पेपर लीक मामले और छात्रों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकविद पीसी महानोबिस के योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। कुछ खबरें विदेशों से भी सुनवा देते हैं आपको। रशिया के समाचारी संस्थान आरटी के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन मुद्दे पर एंकरेज में अमेरिका के साथ हुई बातचीत में रशिया उन शर्तों को स्वीकार करता है जिसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। पुतिन ने कहा कि एंकरेज में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में हो रही घटनाओं को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति को मना लिया है और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति एक मैच्योर पॉलिटिशियन है। भारत से खबर आ रही है कि भारत के असिस्टेंट कोच रायन टेन दोषहाते ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू से पहले उस प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे टीम के अन्य खिलाड़ी गुजरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को बाहर रखना टीम में सही मैसेज नहीं है। उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सूर्यवंशी को शामिल नहीं किए जाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। T20 वर्ल्ड चैंपियंस भारतीय टीम ये सीरीज 0-2 से हार गए हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट्स में एक अमेरिकी अधिकारी ने हवाले से कहा है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच हमलों के बाद दोनों देश तनाव कम करने और पीछे हटने पर सहमत हुए हैं। ये सहमति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास हुए कई हमलों के बाद बनी है। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि अब जहाज इस समुद्री रास्ते से स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से कई वार्ताएं जारी रहेंगी। फीफा वर्ल्ड कप के एक नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है और इस जीत की बदौलत कनाडा इस वर्ल्ड कप में अंतिम 16 में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उनकी सेनाओं ने खुफिया जानकारी के आधार पर संडे और मंडे के दरमियानी रात अफगानिस्तान में सैन्य अभियान चलाए जिसमें 29 यानी कि 29 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने डूरंड लाइन के नजदीक सुनियोजित जमीनी अभियान चलाए। इसके बाद लाइन के नजदीकी इलाकों में जमात उल अहरार और पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन TTP के आतंकवादी ठिकानों और सुरक्षित कैंपों पर टारगेटेड हवाई हमले किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खैबर पख्तूनवा के बाजौर में जमीनी अभियान चलाया गया जिसमें आतंकवादी कमांडर खान फ्राश यानी कि जबाल और जमात उल अहरार के 3 अन्य आतंकवादी मारे गए हैं और इसके अलावा कई अन्य घायल भी हुए हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: शंकर जय किशन के म्यूजिक पर जुबली कुमार की फिल्म आई मिलन की बेला से लिया था ये गाना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और लीजिए आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। दिया गुडमेस से आपका मैसेज आया है और लिख रही हैं कि मैं कुकिंग भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं ऋतु तुम्हें भी सुन रही हूँ। तो दिया, अच्छे से कुकिंग करना, टेस्टी खाना बनाना, ठीक है, अच्छे अच्छे गाने मैं सुनवा रही हूँ, थैंक यू मैसेज के लिए। और इसके अलावा रोहित हमारे साथ जुड़े हैं, चंदू शाह जी हमारे साथ है, ललित पटेल जी हमारे साथ हैं, कहते हैं लवली टू हियर योर वॉइस एंड टॉकिंग ऑन द शो टुडे। जी हाँ बिल्कुल, आज भी मैं यहाँ रहूंगी। आज नहीं बताया था मैंने, नेक्स्ट वीक यानी कि इस पूरे वीक मंडे टू फ्राइडे इस शो में, रवि जी के शो में मैं आपका साथ दूंगी। और फिर वीकेंड पर तो हम मिलते ही हैं एंड देन मंडे से रवि शर्मा जी आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले मंडे से अभी फ्राइडे तक मैं ही रहूंगी आपके साथ। सो थैंक यू, आप सब साथ दे रहे हैं। चलिए ये भी बता दें,
1: Like a Radio Holiday Breaks are brought to you by Southall Travel।
0: तो हॉलीडे जाना है और दुबई जाने की सोच रहे हैं तो साउथ होल ट्रेवल को याद कीजिए, क्योंकि इनके यहाँ बहुत अच्छी दुबई की डील्स चल रही हैं। आप उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है और अब दुबई में रेस्ट्रिक्शंस भी हट चुके हैं, तो जाइए घूम कर आइए, मौसम का मजा लेकर आइए।

इस फिल्म में सलमान खान से ज्यादा भाग्यश्री को पसंद किया गया था, लेकिन भाग्यश्री ने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट घर बसाना समझा और उन्होंने घर बसा लिया। लेकिन आजकल काफी एक्टिव है, सोशल मीडिया पर कभी रेसिपी बनाती हुई दिखती हैं, कभी योगा करती हुई नजर आती हैं, कभी कोई फिटनेस टिप्स देती हुई नजर आती हैं, यानी कि उन्होंने अब अपने आप को काफी बिजी रखा हुआ है। रोहित, ये गाना आपको पसंद है, कहते हैं फिल्म भी बहुत अच्छी थी। यस, बहुत बड़ी हिट हुई थी, आपको अच्छा लगा गीत। थैंक यू। प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई है, थैंक यू विजय गोनवा जी। दिलीप कुमार वैमली से जुड़े हैं, कहते हैं मैं बहुत मल्टीटास्किंग हूं और मैं

0: कहीं जल ना जाए, डरते हैं ख्वाब से कहीं टूट ना जाए, लेकिन सबसे ज्यादा डरते हैं आपसे। अच्छा, कहीं आप जैसे दोस्त हमें भूल ना जाए। आप ऐसे ऐसी कविताएं और ऐसे ऐसे मैसेजेस भिजवाएंगे तो आपको भला कौन भूल सकता है। थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई शो, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफकोर्स मधु जी, स्वागत है आपका भी। कहती है ये गाना ऋतु मेरे नाम कर दो, लीजिए किया हमने आपके नाम पर भी। ये है Like a Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone. तो आज जो 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए and 162 बांग्लादेशी टकास। Like a
1: radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKER Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 98.6 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica
3: Radio. Yeh hai Leica Radio. Leica
4: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
4: Big deals, big savings, while stocks last.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Welcome to the jungle.
4: Film bilkul fake.
8: Hamari film army wali.
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
8: स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
11: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
12: किस लिए फिल्म में?
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208890880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: CTV एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर। इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंटिम अपोलो, हैमरस्मिथ। हमारे राम।
15: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
14: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
16: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
17: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
16: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty.

0: across the Midlands. This is Leica Radio on DAB and online.
1: A part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Andy Burnham's preparing to set out his vision for the UK if he becomes the next Prime Minister. The Labour leadership favourite wants to create a number 10 in the north as part of wider plans to devolve powers away from Westminster. The head of the Conservatives, Kemi Badenoch, has dismissed those plans, saying they'll lead to more taxes and regulation. She says the country is now at the mercy of a lengthy leadership contest.
3: Britain is heading for a summer of chaos. We have a caretaker Prime Minister, barely in office, definitely not in power. All major policy and spending decisions have been put on hold.
2: It's thought 47,000 people are still missing following devastating earthquakes in Venezuela. More than 1,400 people are known to have died, with the hopes of finding survivors rapidly fading. An independent report's found England's education system is not set up to serve white working-class children. The study says once-in-a-generation reforms are needed to tackle academic underachievement in the demographic. Resident doctors in Northern Ireland have walked out this morning in their strike over pay. Services at hospitals and GP surgeries are expected to be affected. The gates have opened ahead of the first day at Wimbledon. Brit Harriet Dart opens the action on court one against Yelena Ostapenko after Emma Raducanu withdrew last night with a stress fracture. We've heard from these people that have been camping overnight to get tickets.
4: We initially arrived at 2:40 and we had a beach tent with us that we didn't know because we hadn't opened it yet. There was over 15,000 people already camping.
5: Very excited now. We've got the court two wristband finally after however many hours it's been.
6: It's been like Mission Impossible. You know, getting your tent up, then getting your tent back down.
2: And a group of scientists are working on a way of making a healthier sausage roll. The researchers in Edinburgh say they want to cut the amount of saturated fat without ruining their flaky texture. From Sky News, I'm Kat Suave.
0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
7: Good morning. आइए बात करते हैं आज के मौसम की और आज मौसम अच्छा है. बादल भी छाए रहेंगे लेकिन आज धूप भी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर आज बारिश भी होने की संभावना है. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री तक रहेगा, 24 डिग्री तक, और मिडलैंड्स में ये 22 डिग्री तक जाएगा.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
9: Leica Radio. Chintan, Chintan.
7: जी हाँ, रवि शर्मा जी के मनोरंजन शो में मैं ऋतु शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ. 11:03 हुए हैं, प्रोग्राम का सेकंड आवर है और ये समय निर्धारित है सालों से चिंतन के लिए. चिंतन यानी कि आज का विचार, और आज के विचार में एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी जिसमें मैसेज बहुत बड़ा है. एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा. गांव में सिर्फ एक मात्र नदी थी जो पानी का स्रोत थी, लोगों की जीवन दायिनी थी, लेकिन गर्मी के कारण वो नदी पूरी तरह से सूख चुकी थी और पानी के बिना फसलें बर्बाद हो रही थी. लोग परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें. पानी तो जीवन है और पानी के बिना जीवन संभव नहीं। गांव के बुजुर्गों ने एक उपाय बताया। सबने मिलकर बैठक की पेड़ के नीचे चौपाल पर और डिसाइड हुआ कि जो नदी है उसके मुहाने पर यानी कि उसके मुंह पर मिट्टी और पत्थरों का एक छोटा सा बांध बना दिया जाए तो हो सकता है कि पहाड़ों से जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वो वहां रुक जाए और शायद गांव वालों की प्यास बुझ जाए। लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ये आइडिया अच्छा है, ऐसा ही करते हैं। और तय हुआ अगले दिन ये काम किया जाएगा। सवेरे गांव का गरीब किसान रामू वहां पहुंच गया अपनी कुदाल और टोकरी लेकर नदी पर बांध बनाने के लिए। उसने देखा कल तो सब बड़े बड़े वादे कर रहे थे लेकिन आज तो यहां पर कोई नहीं है। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, आते ही होंगे। वो अकेला ही मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदता, उसे भरता, टोकरी में डालता और जहां तय हुआ था वहां ले जाकर डाल देता। करता रहा। दोपहर हो गई, बहुत बुरी तरह वो थक भी गया और सुबह से लेकर दोपहर तक काम करते करते सिर्फ एक छोटा सा ढेर ही बना पाया। उसे देखकर गांव के कुछ लोग हंसने लगे और बोले, रामू अकेले इस पूरी नदी पर बांध कैसे बनाओगे? इस पूरी नदी को कैसे बांधोगे? तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा कि मैं जानता हूं मैं अकेला इस काम को पूरा नहीं कर सकता हूं। कल जब मीटिंग हुई थी सरपंचों के बीच में तो सबने डिसाइड किया था कि हम इस नदी पर बांध बनाएंगे ताकि पहाड़ों से गिरने वाले पानी को रोक सके, लेकिन कोई नहीं आया। पर मैंने सोचा क्यों ना कोशिश की जाए, छोटी छोटी कोशिशों से ही तो बड़े बड़े काम होते हैं। अगर मैं शुरुआत नहीं करूंगा तो हम सब तो प्यासे मर जाएंगे। एक एक टोकरी मिट्टी ही सही, लेकिन कुछ तो पहाड़ बनेगा, कुछ तो काम होगा, शायद मैं थोड़ा सा ही पानी रोक सकूं। बाकी के लोग जो ये मानकर बैठ गए थे कि ये संभव ही नहीं है, पहाड़ से आने वाले पानी को हम रोक ही नहीं सकते, इस सूखे को हम टाल ही नहीं सकते, रामू का जज्बा देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने कहा, नहीं तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पहले दो लोग रामू के साथ जुटे, उन्हें देखकर दो लोग और आ गए और देखते ही देखते पूरा गांव अपनी अपनी टोकरियां लेकर वहां पहुंच गया। पुरुष क्या, नारी क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, सभी हाथ बटाने लगे। पुरुषों ने भारी पत्थर उठाए, महिलाओं और बच्चों ने टोकरियों में मिट्टी भरी और बुजुर्गों ने सबका हौसला बढ़ाया। जो काम अकेले रामू के लिए महीनों में भी असंभव था वो पूरे गांव के हाथ बढ़ाने से मात्र दो दिनों में पूरा हो गया। और कुछ ही दिनों बाद जब पहाड़ों पर बारिश हुई तो गांव वालों का बनाया हुआ छोटा सा बांध पानी से भर गया और पूरे गांव की किस्मत बदल गई। छोटी सी कहानी है लेकिन चिंतन बहुत बड़ा है। जब हम किसी मकसद के लिए एक साथ कदम बढ़ाते हैं ना तो बंजर जमीन पर भी हरियाली लाई जा सकती है, यानी कि एकता में शक्ति है जो सूखी नदियों को जीवन दे सकती है, जो आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसी चीजें हैं जहां आप अकेले पड़ जाते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप एकजुट हो जाएं तो फिर आप बहुत सारी चीजें मनवा सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि गांव वालों ने वो कर दिखाया। जो शायद असंभव था, और देखिए सबकी प्यास बुझाई।

0: चिंतन।
1: और यही था आज का चिंतन कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए किसी ने कितनी खूबसूरत कविता लिखी है कि अकेला राही थक जाता है, राह की धूल में खो जाता है, पर जब मिल जाते हैं कदम तो पर्वत भी झुक जाता है। एक बूंद का क्या है अस्तित्व, धूप लगते ही उड़ जाती है, पर बूंदे जब मिल जाती हैं तो सागर की लहरें बन जाती हैं। और इसी तरह एक तिनके की क्या है औकात, आंधी में उड़ जाता है, पर तिनके जब मिल जाते हैं तो भारी गजराज भी बंध जाता है। इसलिए न तू अकेला न मैं अकेला, साथ चले तो जग का मेला, कठिन डगर भी हंसकर कटेगी जब मिलकर झेलेंगे हर झमेला। क्या खूबसूरत गाना लिखा है साहिर लुधियानवी ने। ये गाना अमर है और ये गाना लोगों की रगों में जोश भरने वाला है। और इस गाने में एक मैसेज भी है और यही छोटा सा मैसेज आज चिंतन में भी था, जिसे आप सभी ने पसंद किया है। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। थैंक यू राजेश जी कहते हैं, बहुत सुंदर संदेश है, छोटे कदमों का एकता पर एक छोटे छोटे कदम, यानी कि एकता बड़े बदलाव लाती है, जो धीरे धीरे और संभाले हुए कर्मों के जरिए सार्थक और स्थायी सुधार प्राप्त करने पर जोर देती है। यस, अगर हम मिलकर कुछ करें तो वाकई में हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू आंटी जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू अमिता जी, अगर हम बट जाएंगे तो यस हम कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर मैसेजेस हैं आपके आ रहे हैं। थैंक यू जैस्मीन आपके मैसेज के लिए। थैंक यू वत्सला जी। थैंक यू अर्जुन जी, भारती दीदी, शेखर आनंद, रागिनी जी, वियाना से अनिल सोनी जी, जासू जी, बुशी से जगदीश जी, हरविंदर जी, थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। एंड साथ ही साथ ज्योत्सना वघेला, आप गीतों को पसंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज भेजा है किसने, नाम क्यों नहीं लिखा ये मैसेज भेजा है किरण जी आपने। सो थैंक यू, आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। तो बस यही है चिंतन, जिसके आप सब प्रशंसक हैं और ये सालों से चलता आ रहा है। और इन दिनों आजकल रवि शर्मा जी हॉलिडे मना रहे हैं, इसलिए उनकी जगह ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है। फ्राइडे तक मैं यही रहूंगी, लेकिन फ्राइडे के बाद मंडे से रवि शर्मा जी अपनी हॉट सीट पर आ जाएंगे, लेकिन तब तक आप मेरा साथ दीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। एंड जून के खत्म होने से पहले आप जीत सकते हैं एक £75 का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: Leica Radio.
2: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
1: तो आपको बताते चलें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील और जापान की टीम्स के बीच में मैच रहेगा और दूसरा मैच होगा जर्मनी और पैराग्वे के बीच में। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप अपनी 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से। और ये सब हो सकता है जब आप उनसे मेंशन करेंगे लाइका।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Yeah.
2: Leica Radio.
0: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
0: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 g 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 एसिस्टन स्ट्रीट LE1 2JU या रोलेट्स हिल LE5 4UN।
0: बिग डील्स बिग सेविंग्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
4: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
5: वेलकम टू द जंगल।
0: फिल्म बिल्कुल फेक।
5: हमारी फिल्म आर्मी वाली
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
0: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
5: और स्टार कास्ट है
0: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू। स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
0: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
7: मैं किस लिए फिल्म में?
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
14: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
15: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. Imagine X Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
2: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Leica Extra Podcast.
7: Be a part of the conversation. Details at LaikaRadio.com and the Laika Radio mobile app.
17: Laika Radio.
7: Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
18: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: से। ओपी नैयर के म्यूजिक पर रफी साहब और शम्मी कपूर का कॉम्बिनेशन जब भी हुआ है कमाल ही हुआ है। और शेखर अनंत जी कहते हैं कि ये गाना मेरे नाम कीजिए, बिल्कुल हमने आपके नाम पर किया शेखर जी। और दीपक जी हेचेंड से आपने क्या खूबसूरत मैसेज भेजा है, कहते हैं रितु व्हाट ए वंडरफुल प्रोग्राम यू प्रेजेंट विद योर डिवाइन वॉइस, क्या बात है, ये कहकर तो आपने मेरा दिन बना दिया। और आप जानना चाहते हैं कि चिंतन जिसे आपने मिस कर दिया है आप कैसे सुन सकते हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूं कि आज का जो चिंतन है वो भी आप फिलहाल नहीं सुन पाएंगे क्योंकि लिसन बैक पर जाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हाँ 4-5 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे आप ज़रूर सुन सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। और उसके लिए आप ऐप पर जाकर या फिर आप हमारी ऑनलाइन पर भी जाकर सुन सकते हैं। और ऐप पर जब जाएंगे तो आपको राइट हैंड कॉर्नर में 3 लाइंस दिखेंगी, उन पर टच कीजिए, आपको सारा शेड्यूल दिख जाएगा, प्रेजेंटर्स कौन है, क्या प्रोग्राम्स हैं, कौन से रेडियो, और वहाँ पर एक फीचर लिसन बैक भी है। जब आप उसको टच करेंगे तो आपको पूरा कैलेंडर मंथ दिख जाएगा और उसमें आप डेट सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस दिन का दिखना है, और बस आप जब वो डेट सेलेक्ट करेंगे तो उस दिन के प्रोग्राम्स दिख जाएंगे और उसमें आपको जो प्रोग्राम सुनना है उसको सेलेक्ट कीजिए और आप सुन सकते हैं, यानी कि 1 महीने पीछे तक के आप किसी भी प्रोग्राम को सुन सकते हैं लिसन बैक पर जाकर। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी यंग जनरेशन या जेंजी से पूछ लीजिए क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स हैं इन सब कामों में, तो आई एम श्योर वो आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे, और अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको ज़रूर बता देती लेकिन आप ज़रूर सुन पाएंगे। सो थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए, थैंक यू गिरीश जी, साथी हाथ बढ़ाना गीत आपको बहुत अच्छा लगा। अब्दुल गफ्फार जी नीजडन में सुन रहे हैं और कहते हैं कि ऋतु चिंतन बड़ा अच्छा लगा, और आपने लिखा है कि अच्छा मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ। आप कहते हैं कि जो पास्ट में रेडियो प्रेजेंटर साथी लुधियानवी होते थे वो प्रोग्राम के स्टार्ट में यही गीत लगाया करते थे और आपने आज मुझे उनकी याद दिला दी, उनकी याद ताज़ा कर दी। ओह थैंक यू अब्दुल गफ्फार जी, आपने हमारे साथ अपना मैसेज शेयर किया है। थैंक यू, ढेरों मैसेजेस हैं जिन पर जल्दी से एक नज़र डाल लेती हूँ, लेकिन फिलहाल आप सबको सुनवा देती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बड़े दिल वाला फिल्म से था ये गाना, रितेश कहते हैं। गाना बहुत सुंदर है और मेरे को भी पसंद है, आपको भी पसंद है, चलिए आपके नाम पर किया है। ज्योति हमारी साथ दे रही हैं और जितने भी साथी प्रोग्राम सुन रहे हैं सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस शो में। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहाँ पर ऋतु शर्मा है आपके साथ सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
1: Leica Extra podcast update.
0: तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड टापूज, और जिसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। और याद दिला दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: Like our radio.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.

0: कीजिए। दो बैक टू बैक रोमांटिक गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हुआ है। कभी कभी फिल्म से था ये गाना, खयाम का म्यूजिक, लता जी की शोरदा की आवाज़ें, और उससे पहले यादों की बारात जिसमें आशा जी और रफी साहब की आवाज़ें थी। और जब भी मैं यादों की बारात फिल्म के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा या तो विजय अरोरा और जीना तमान पर पिक्चराइज ये गीत याद आता है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, या फिर जीना तमान और तारिक शाह पर चांद मेरा दिल। यू नो, धर्मेंद्र मुझे यादों की बारात में कभी भी दिमाग में नहीं आते हैं, जबकि इस फिल्म के हीरो दरअसल धर्मेंद्र ही थे। क्यों, शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो इन लोगों पर पिक्चराइज गाने हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, और हम अक्सर फिल्म तो एक आध बार ही देखते हैं, गाने अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाने थे दोनों। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। गिरीश जी आनंद आज्ञा कह रहे हैं, भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू हंसा जी, आंटी जी आप हमारे साथ हैं। सत्यनारायण सैनी भारत से जुड़े हैं, उलाश टोरंटो से हैं। एंड राजीव पटेल जी, यस ऑफ कोर्स आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, थैंक यू। एंड फरीदा जी, वो जो गाना था ना, अजीब दास्ता है ये गाना आपने कहा उल्टी गोल्डी लगाइए, आपके साथ साथ उन सभी यंगस्टर्स को डेडिकेट किया जो 65 प्लस है या फिर 70 प्लस है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं 124 pounds. 124 रुपीस मिलेंगे 1 पाउंड के बदले में आपको 124 रुपीस 0.55 पैसे, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा जून के खत्म होने से पहले पहले। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, आल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी, और ये सब कुछ करना होगा आपको ब्रांच में जाकर, ऑनलाइन या फिर SBI के योनो ऐप के थ्रू।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Welcome to the jungle.
3: Film? Bilkul fake.
2: Hamare film army wali.
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
2: और स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में।

0: लीजिए ओपी नैयर के म्यूजिक पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आशा जी और शमशाद बेगम की आवाजों में। और आपको बता दें कि इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक शमशाद बेगम ही हैं और उनकी आवाज में गाया हुआ एक गाना आपको हर शो में सुनने को मिलेगा ही मिलेगा।
1: Brought to you by Dairy Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सुपर हिट फिल्म आमिर खान जूही चावला की फिल्म अलका याग्निक की आवाज में ये गीत आपने सुना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: ye hai Like a Radio. तो आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप श्री राम की कथा को देखना चाहते हैं तो भाई ये मैसेज आप ही के लिए है। लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम, और ये होने जा रहा है 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में एट लंदन एवेंटियम अपोलो, जिसमें आशुतोष राणा ने रावण का कैरेक्टर निभाया है और राहुल बुच्चर बने हैं राम। एक बहुत ही सुंदर स्टेज शो है जिसने भारत में बहुत धूम मचाई है, दुबई में बहुत धूम मचाई है, भारत में कम से कम 500 से ज़्यादा सुपर हिट शोज किए हैं लगभग हर शहर में, और दुबई में भी हाउसफुल शोज के बाद अब लंदन में आ रहा है। अगर आप राम के जीवन को देखना चाहते हैं, एक अलग अंदाज में राम के कैरेक्टर को इसमें दिखाया गया है, रावण के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं आंखों के साथ, क्योंकि स्टेज शो देखने का मजा ही कुछ और होता है, तो बिना किसी देरी के टिकट्स बुक कराइए, क्योंकि टिकट्स बहुत जल्दी जल्दी बिक रहे हैं और ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाएं। फौरन टिकट्स बुक कराइए और इस शो को देखकर आइए, देखने का मजा उठाइए।
1: ये है लाइका रेडियो।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: ये गाना तो साधना सरगम की आवाज में आपने गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से सुना, लेकिन 90s के और भी गाने आप हरिहरन की आवाज में यानी कि उनके गाए हुए गीत लाइव ऑन स्टेज सुन सकते हैं, क्योंकि लेजेंडरी हरिहरन परफॉर्म करने जा रहे हैं लंदन में और उनका शो का नाम है सोल इंडिया और ये होने वाला है रॉयल फेस्टिवल हॉल में सैटरडे 4 जुलाई को और टिकट्स अवेलेबल हैं southbankcenter.co.uk पर। इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स। मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LEICA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: The gold rate is 98.1 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
0: जी, अब समय आ गया है आपसे बाय कहने का। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, न्यूज के उस पार बाली ब्रह्म भट्ट आपका साथ देंगे, लेकिन कल होगी मेरी आपसे फिर से मुलाकात। बाय बाय जासू जी, बाय बाय आप सभी को सुबह से अब तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, लेकिन कल 10 बजे हम और आप फिर से मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिये, कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
5: ये है
6: Leica Radio।
5: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
7: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, Falcon Cash and Carry,
7: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
5: Big deals, big savings, while stocks last.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
10: This July, witness the rise of a new force.
9: Hi boys.
11: What's up?
10: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shanvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
9: Jisse tumse baat karni hai. Rok lo.
10: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal.
12: Main jo bana raha hoon wo itihas hai.
10: Don't miss India's biggest female-led action event.
12: India
10: Alpha in cinemas from the 3rd of July.
13: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the

रामा ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी गोदी तोरी बाकी बाकी चितवन में उलझ के।

0: कितना खूबसूरत गाना है, लेकिन अगला गाना जो है वो तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होगा, बिकॉज वी आर विशिंग वीडियोरामा, वीडियोरामा अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, लोगों ने पता नहीं कैसी कैसी बातें उड़ाते रहते हैं, वीडियोरामा ऑन सेल, वीडियोरामा इज गोइंग टू शट डाउन, कुछ भी नहीं है। अश्विन भाई ने मेरे को खुशखबरी दी, दे हैव कंप्लीटेड 39 इयर्स एंड दे आर गेटिंग इनटू द 40th ईयर एंड लाइफ बिगिंस एट 40, डजंट इट। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर देखना बाकी है। सो अश्विन भाई, हम सब जमा होंगे वहां पे, and we are going to celebrate your birthday the whole week it is. So sab doston ko hum darkhwast karte hain, right from east london right up to west london. Who is listening over here? Yes, kishore pandya ji sun rahe hain aur haath upar karke bol rahe hain ki zordar. Yes, he is going to be there. So khai ke paan banaras wala, happy birthday to none other than Videorama.
1: This is Leica Radio across the Midlands.
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा।

गौहर कानपुरी, आप सुनना लिरिक्स, ट्यून से ज्यादा लिरिक्स सुनना। वी आर रिमेम्बरिंग द राइटर लिरिसिस्ट गौहर कानपुरी, जिन्होंने खूबसूरत अदा से गाने लिखे, लाइक अ गोल्ड गिव्स अ ट्रिब्यूट।

0: इतने खूबसूरत गाने, सबके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि इतने प्यारे गाने, लेकिन जिस शख्स ने ये गाने लिखे उनके बारे में अगर मैं कहूँगा तो आपको थोड़ी सैड फीलिंग भी आएगी, लेकिन चलो 24 साल हो चुके हैं उनके गुजरे हुए। गौहर कानपुरी, ही वॉज बॉर्न ऑन 1st of October 1932 कानपुर में, इसलिए तो नाम है गौहर कानपुरी। 29th June 2002 में ही पास्ड अवे ड्यू टू अ किडनी इन्फेक्शन एट द एज ऑफ 69। ही डाइड 3 months बिफोर हिज 70th बर्थडे। चाइल्डहुड में कानपुर में बड़े हुए और ही वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएट्री जब स्कूल में थे, एंड देन बाय द टाइम ही वॉज अ टीनेजर ही मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। फिर तो सब लोगों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया इनकी लिखी हुई कविताएं और गजलें सुनकर, तो इनको चस्का चढ़ गया। इन्होंने कहा अब मैं जाऊंगा बॉम्बे। जी हाँ, उस जमाने में इट वॉज बॉम्बे टू परस्यू हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ राइटर इन द हिंदी सिनेमा। लेकिन जाते ही इनके पसीने छूट गए। इन्होंने क्या सोचा था, खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसी बात हो गई थी, लेकिन वो बात नहीं थी। बात ये थी कि लोग इतने बड़े बड़े सपने सजाकर आते हैं लेकिन बिना स्ट्रगल कुछ भी नहीं मिलता। जी हाँ, आप उससे बात कर रहे हो जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। 10 years ऑफ स्ट्रगल, गौहर कानपुरी हैड टू स्ट्रगल फॉर 10 years। 1967 में उनको ब्रेक मिली। देखो 1957 में वो गए बॉम्बे और वहाँ 1967 में इनको फर्स्ट ब्रेक मिला प्यार की बाजी। इट वॉज सलीम प्रोडक्शंस का और एक ही गाना इन्होंने लिखा था, बड़े हसीन है सर को झुकाए बैठे हैं। गाना कुछ अच्छा चला लेकिन इतना नोटिस नहीं किया गया उनको। द कंपोजर वॉज जिमी एंड सिंगर महेंद्र कपूर एंड उषा मंगेशकर। अब उस रात के बाद 1969 की एक फिल्म थी, वहाँ पे उन्होंने गाने लिखे। एंड देन दे गॉट वन और टू सॉन्ग्स फॉर शिव भक्त बाबा बालकनाथ, 1972 की फिल्म। फिर 73 में कोरा आंचल, ऐसी ऐसी फिल्में जिसके नाम भी हमने नहीं सुने हुए, लेकिन वो एक दो गाने लिखते रहे। फिर वो समय आया 1975 का, मेहनत का फल रंग लाया, बप्पीदा को मिले। एक फिल्म थी नन्ना शिकारी, उसमें वो गाना लिख रहे थे। वो नन्ना शिकारी वॉज बप्पीदास फर्स्ट फिल्म जहाँ पे वो म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे थे और उनकी मुलाकात गौहर कानपुरी से हुई और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनाई, दे फॉर्म्ड अ टीम। और एक फिल्म थी जख्मी 1975 की, एंड फर्स्ट टाइम ही रोट ऑल द सॉन्ग्स, जहाँ पे एक दो गाने दो तीन गाने मिला करते थे, लेकिन यहाँ पे पूरी फिल्म के गाने इन्होंने लिखे जख्मी के। एंड द डोर्स ऑफ सक्सेस ओपन्ड। जी हाँ, दैट वॉज अ बिग ब्रेक। आपने एक गाना तो सुना उस फिल्म का, अभी अभी थी दुश्मनी अभी दोस्ती, कितना प्यारा गाना, कैसी खूबसूरती से लिखा। एंड देन सावन को आने दो, वो फिल्म के गानों में से इन्होंने ये गाना लिखा, सावन को आने दो, द टाइटल सॉन्ग, जसपाल सिंह एंड कल्याणी मित्रा जी ने जो गाया। फिर तो काफ़ी गाने उनको मिलते रहे, गाने लिखते गए, लेकिन वो बात नहीं बनी जो जख्मी फिल्म में बनी थी। फिर वो फिल्म का गाना उन्होंने लिखा जहाँ पे नोटिस किए गए वापस, फिल्म बाजीगर का गाना, दैट इज द नेक्स्ट सॉन्ग दैट इज कमिंग, जो विनोद राठौड़ ने गाया, अलका याग्निक और विनोद राठौड़। विनोद राठौड़ से लास्ट वीक में मेरी बात हुई, हम तैयारी कर रहे हैं उनके आने की, सुनते रहिएगा खबर। अब आगे सुनिए इनका एक गाना और उसके बाद दो ट्रिब्यूट्स और हैं। एक है सुधीर द फेमस एक्टर, one of the most successful villains. And the other one is also a wonderful lady, Kamini Kadam. Unke bare mein hum sunenge.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 124.55 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000, TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: FIFA World Cup 2026 and the first match of round of 32, that's the knockout stage, was South Africa versus Canada, in which Canada scored 1 goal and won the match. Today at 6 p.m. it's going to be Brazil versus Japan, and 9:30 p.m. it's going to be Germany versus Paraguay. It's now the knockout stage, and don't forget, I have to tell you something special about this particular announcement that I'm making. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice when our sponsors Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
5: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
6: OMG!
5: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
6: Murder Mystery!
5: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio. Yeah.

0: संगीत है दत्ताराम का और हसरत जयपुरी की लिरिक्स, फिल्म है संतान 1959 की। वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ कामिनी कदम, हु डिड ओनली सिक्स हिंदी फिल्म्स, सिक्स और सेवन हिंदी फिल्म्स, एंड दिस वाज वन ऑफ देम, संतान। नेक्स्ट इज तलाक, हर फर्स्ट फिल्म विद राजेंद्र कुमार।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Kavi Pradeep ne likha, C. Ramchandra ka sangeet hai.

आशा भोसले और मन्ना डे। ट्रिब्यूट टू कामिनी कदम, 26th डेथ एनिवर्सरी, हर फर्स्ट फिल्म तलाक विद राजेंद्र कुमार, 1958।

0: Remembering Sudhir Luthria, भगवान दास मूलचंद लुथरिया 1944 में जन्मे हुए, उनको हम याद कर रहे हैं आज. What a wonderful actor and villain. इन्होंने हकीकत में कितना अच्छा काम किया था, खोटे सिक्के, धर्मात्मा, फिर सत्ते पे सत्ता, हरे राम हरे कृष्णा, गैम्बलर, जोशीला, ये सब फिल्मों में उन्होंने काम किया था. अब हमारे रमेश सबरवाल और सरिता सबरवाल जी के मेहमान जो आए हुए हैं, उनको मैं ये गाना स्पेशली पेश करता हूँ. अभी नाम बताऊंगा कौन मेहमान है, सुनिएगा.
1: This is Leica Radio across the Midlands.

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie, results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
3: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
5: Punjab, the biggest tunes.

0: This is Laika Radio.
1: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल fake.
1: हमारी film army वाली.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
4: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
5: किस लिए फिल्म में.
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
6: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danu. Prime location,
2: high appreciation
7: in Dubai.
0: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट पे किया.
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394.
0: This is the Laika Radio Network, broadcasting across the UK. The sounds of love across the Midlands. The Love Sound. This is Laika Radio.

0: Biker Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: दिस इज Leica रेडियो, पार्ट ऑफ द Leica रेडियो नेटवर्क।
2: Leica रेडियो,
1: टाइम फॉर अनदर Leica लव क्लब।